0: पुल जी सर हैं जिनको मैंने पूरा यानी कि सिया का केस दिया है, और आशुतोष श्रीवास्तव जी बड़ा नाम है उनका, तो
1: सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील
0: हाँ
1: हैं।
0: जी हाँ जी उनका आज बड़ा बड़ा नाम है उनका आज, तो मैंने कभी

0: वही सजा है जो केतन जी के साथ हुआ है। ये तो मैंने पहले भी मीडिया में बयान दिया है, और दोषी कोई भी हो, मेरी बेटी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे।
1: एक
0: सजा उनको
1: बाप अपनी
0: मिलनी
1: बेटी को अगर वो
0: चाहिए,
1: दोषी करार देती है तो वो सजा देने के हक में है।
0: पूरा पूरा हक में है, पूरा हक में, और इमीजिएटली एक्शन लेके ये काम खत्म होना चाहिए।
2: Meanwhile, a Jabalpur based dentist, Dr. Muskan Soni, has come under fire after posting an Instagram reel mocking this case and using the phrase, "I hate men." The video triggered massive backlash online, prompting her to issue a public apology. However, she defended her use of the phrase, saying it reflected her personal experience. Listen in.
3: So, hello everyone. I saw the story that the creator had posted about me because of that nuisance story that I have posted, and I really want to apologize for that. But I want to just say one thing, that आप लोग जो भी ये सब लिख के भेज रहे हो ना, that is not at all justified, because I really, really don't accept this. And ये video is not an apologetically बस आप लोगों को दिखाने के लिए. It is because I am very, very sorry for the words I have used, that I have just used for a joke or something. बिल्कुल भी नहीं है, which is वो topic बहुत sensitive है. And I want you guys to just check मेरी उस दिन की story, जिस दिन ये केतन अग्रवाल का case आया था. And I have posted the story. I was the one who posted the story, and I have written that I hate men. I use that thing, but I never ever demean the people according to the gender. And उसमें मैंने लिखा हुआ है कि why with the insensitive people and why with the innocent people. ये सब नहीं होना चाहिए. And even I got the comments from the males that you took the stand on. It's ne आप जो देखते हो हमेशा वो सच हो, that is not the thing. I know I write, I hate men. I write it, I accept it. और अगर ये गलत है, मैं उसको हटाने के लिए रेडी हूँ.
2: Meanwhile, the Ram Mandir donation theft probe is throwing up fresh details. As per our sources, the Ram Temple Trust will hold its upcoming meeting on the 6th of July. And a final decision regarding the resignations of General Secretary Champat Rai and Trustee Dr. Anil Mishra will be reached through voting, we're told. Meanwhile, you're about to see a picture of accused Avinash Shukla's brother, which is going viral. Take a look at what he's got in his hands there. Bundles of cash. Avinash's brother, Amit Shukla, is seen with bundles of notes in his hands, and police will now question Avinash's brother over this picture. It is said that it's from August last year, but investigators are of course looking at that timeline very closely. Meanwhile, the police have moved court seeking 48-hour custody of Avinash Shukla for further interrogation. And as per our sources, the Ayodhya Development Authority has now served a notice on the house being constructed by Lovekesh Mishra.
4: क्या आप रामचंद्र जी को भगवान मानते हैं? ये लोग भगवान रामचंद्र जी को भगवान मानते ही नहीं है. अगर भगवान मानते ये लोग तो कभी चढ़ावे की चोरी नहीं करते. भगवान के सामने दिए हुए दान की चोरी नहीं करते कभी ये लोग. उनको डर लगता अंदर से कि अगर हमने चोरी कर दी तो भगवान देख रहे हैं. भगवान तो सर्वव्यापी हैं, भगवान देख रहे हैं, चोरी देख रहे हैं, हमें महापाप लगेगा.
5: देखिए, हम जो भी मंदिर में गए जाए, हिंदुस्तान का हर एक मंदिर में जाइए, उधर बाहर एक बोर्ड लगे रहता है, जूता और चप्पल चोरी करने वाला है सावधान रहिए, क्योंकि गरीबी है, लोग जूता चप्पल चोरी कर लेते हैं. मैं उसको इतराज नहीं है मेरा, मगर अभी एक नया बोर्ड लगाना पड़ेगा, जो दान पत्र जो पात्र है, जो दान देता है, उसको भी रक्षा करना है. उधर इधर भी चोर है, दान पत्र का पैसा लूटने वाला है, सावधान रहिए करके उधर भी एक बोर्ड लगाना पड़ेगा आरएसएस बीजेपी आने के बाद.
6: हमारी राय क्या होगी? चंपत राय को सबसे पहले अरेस्ट करो, अनिल मिश्रा को अरेस्ट करो, गोपाल राय को अरेस्ट करो. जिसने जिसने वहाँ ज़मीनें खरीद कर ट्रस्ट को बेचा है, वो अयोध्या के मेयर को अरेस्ट करो. ये छोटी मछली को आपने अरेस्ट किया है. राम मंदिर को लूटा है ये लोगों ने, ये सबसे बड़ा रामद्रोह है.
7: के विपक्ष का काम सवाल खड़ा करना है, और राम मंदिर की चिंता अखिलेश यादव की ज्यादा हो गई है. मुख्यमंत्री जी ने कहा पहले जरा कृष्ण भूमि की भी बात कर लें. और जहां तक राम मंदिर का सवाल है, एसआईटी के जो भी रिपोर्ट आएगी, जो भी दोषी पाए जाएंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा.
8: मेरा मानना यह है कि ये जो प्रकरण है

0: यह हर व्यक्ति को बहुत आहत करने वाला है। और मैं स्वयं एक बालक के रूप में अप्रैल 1987 में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की संकल्प रैली में भी गया था। 9 नवंबर 1989 को हमने हॉस्टल में शिला पूजन भी किया था। तो एक राम भक्त कार सेवक के रूप में ये हमें व्यक्तिगत रूप से भी बहुत पीड़ा देने वाला है, परंतु सरकार ने इसमें पूरी तत्परता और प्रामाणिकता के साथ कार्य किया।
1: पहले तो रामनगर परिवार के साथ बना रहा, वहाँ के पुजारी बड़े तन मन से पूजा पाठ कर रहे हैं, आरती भी बहुत समय पर चल रहा है, उसमें जनपद जितना आता है सब जनपद में रह, कोई पैसा आदमी हाथ में नहीं
2: जी।
1: ये और गोपाल जी ऐसे बन गए कि वहाँ जाके सबको ऊर्जा देते हैं। हमारे ट्रस्टी भी समाज को हमेशा समता बनाए रखे, हमेशा देश का विकास बनाए रखे, लेकिन ये जो सबकी बुराई करके हमेशा उलझाने का प्रयास करते हैं।
2: किसने
1: जी? गोपाल जी।
3: देखिए, मेरा सीधा कहना है कि दोषी जो हो वो कोई छूटे नहीं और निर्दोष कोई व्यक्ति फंसा नहीं, क्योंकि जिसका कोई दोष नहीं है वो लोग भी कुछ इसमें आ रहे हैं, ऐसे जिन्होंने जिनका कोई इससे संबंध नहीं था लेकिन एसआईटी सबको उठा ले रही है, यह सबको जांच के लिए ले जा रही है। तो स्वाभाविक लोग तो शक करेंगे ही, लेकिन है, मैं जानता हूँ कि कुछ लोग तो निस्वार्थ भाव से काम करने आते थे।
4: कहने की बात है, व्हाट दे हैव डन वी बिलीव दैट दे बिल्ट अयोध्या एंड लॉस्ट, देयर वाज नो 400 पार, नाउ दे आर रॉबिंग राम, दे पुट राम इन द बैलेट बॉक्स एंड रिड्यूस्ड हिज मर्यादा पुरुषोत्तम स्टेटस, नाउ दे आर रॉबिंग हिम ऑल्सो, दिस इज अ बंच ऑफ थीव्स, चोरों का बिरादरी, ऊपर से नीचे तक इनका सेटिंग फिटिंग इन्हीं के लोग अंदर बैठे हैं। वॉट आर दे टॉकिंग नाउ? दे वॉन्ट एसआईटी इंक्वायरी? अरे बाबा, एनी चाइल्ड विल टेल यू हाउ मच थेफ्ट इज हैपनिंग।
5: वी विल कंटिन्यू टू ट्रैक ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स फॉर यू, फॉर नाउ वी आर स्लिपिंग इनटू अ वेरी क्विक ब्रेक, बैक इन अ मोमेंट।

0: करके पुलिस अब आगे बढ़ रही है। लोनावाला पुलिस, पुणे ग्रामीण पुलिस जो है वो सिया गोयल को लीला कुंज में लेकर आए थे। पुलिस ने तफ्तीश की है और तफ्तीश के बाद पुणे ग्रामीण पुलिस की गाड़ी अब सिया गोयल को लेकर, पुणे ग्रामीण पुलिस के अधिकारी और पुलिस की गाड़ी, इसी गाड़ी में सिया गोयल है, आरोपी सिया गोयल को लेकर पुणे ग्रामीण पुलिस की गाड़ी अब निकल रही है। लगभग 25 मिनट की तहकीकात हुई है और ये गाड़ी निकल चुकी है। सिया गोयल यहाँ पर कम से कम 20 से 25 मिनट पुलिस ने अपनी तफ्तीश की है। काफी सारी इसमें ऐसे चीजें हैं जो अभी सामने नहीं आई है। फॉर एग्जाम्पल, उस समय क्या कपड़े पहने हुए थे, क्या शूज थे, चेतन के भी केस में ही है। इस चीज को लेकर पुणे रूरल पुलिस बड़ी तफ्तीश कर रही थी। कम से कम 25 मिनट यहाँ पर पुणे रूरल पुलिस की गाड़ी सिया गोयल को लेकर आए थे। काफी क्या तफ्तीश की है रूरल पुलिस से आगे पता चलेगा, लेकिन सबसे पहले इसको दिखाने के लिए आपका अपना न्यूज डॉट्स।
1: Right, my colleague there trying to get us a glimpse of Sia Goyal, and that is Sia Goyal who's now being taken to that hill where she had practiced. It was a practice round that took place on another hill which wasn't too far from her residence. First, she was taken to the residence by the Pune police. Do remember that they have custody of both these accused till tomorrow, the 3rd of July. The probe has intensified in the murder case of Ketan Agarwal, who was killed by his fiancée Sia and her boyfriend Chetan. Investigators have told NDTV that Sia allegedly took possession of Ketan's mobile phone after he fell from the cliff, and that she is now being probed for the possible deletion of data. If that allegation is backed by forensic evidence, it adds another layer of possible pre-planning to a crime that investigators already believe was carefully planned. NDTV has also accessed a Snapchat video of Sia and Chetan from the 27th of May, almost 3 weeks before Ketan was murdered.
2: आपके वकील कौन है, मतलब इस केस में सिया गोयल को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है?
3: मेरे वकील जी अभी विपुल जी सर हैं, जिनको मैंने पूरा यानी कि सिया का केस दिया है, और आशुतोष श्रीवास्तव जी बड़ा नाम है उनका,
2: सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं।
3: हाँ जी उनका आज बड़ा नाम है उनका आज, तो मैंने कभी उनको कुछ हायर नहीं किया है और ना इस केस में उनको कुछ यानी कि काम करने का मैंने कुछ कहा है।
2: तो इस केस कौन देख रहा है फिर?
3: विपुल जी सर देख रहे हैं जी।
2: अच्छा, और भी मेरे कुछ सवाल है आपसे। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है आप, जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है?
3: पुलिस अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रही है और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि उन्हें जल्द से जल्द आरोपी का पता चले, ये मेरी भगवान से भी प्रार्थना है।
2: और सिया आरोपी ऑलरेडी है, कल दोषी करार हो गई तो?
3: दोषी करार होती है तो वही सजा है जो केतन जी के साथ हुआ है, ये तो मैंने पहले भी मीडिया में बयान दिया है। और दोषी कोई भी हो, मेरी बेटी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे,
2: सजा उनको मिलनी चाहिए। बेटी को अगर वो दोषी करार देती है तो वो सजा देने के हक में है?
3: पूरा हक में है, पूरा हक में, और इमीडिएटली एक्शन लेके ये काम खत्म होना चाहिए।
1: Certain tracks to more news coming out of Maharashtra. We're talking about the monsoon chaos that's continuing to grip the financial capital, with heavy rain triggering widespread waterlogging across the city. And this is from King Circle and Kurla all the way to Dadar and also Navi Mumbai and Khargar. All these areas and roads that have been submerged and, you know, completely flooded, waterlogged. We have, in fact, homes and that have also seen water entering some of those homes, massive traffic jams, heavy rain that's flooded homes in the Kamalanagar area of Mumbai. Then we have Sion, where this area has also seen water entering residential buildings and disrupting daily life. Residents allege clogged drains and delayed desilting has worsened the flood situation in the financial capital that has to brave the monsoon every season. The season that continues for 4 long months. This time around, the only saving grace perhaps was that monsoon was delayed by 2 weeks. So we're seeing that, you know, loss of time that monsoon is now sort of making up for it. Now here we see waterlogging in Dadar's Hindu Colony that has left pedestrians wading through ankle deep water. So those are the visuals coming about after relentless rain continued to disrupt movement and daily life in the region. Heavy monsoon rain has left Mumbai's King Circle heavily waterlogged as well, submerging roads and slowing traffic to a crawl. Commuters are facing major delays as vehicles inch through flooded stretches. As you can see on your screen here,

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।

0: Ladies and gentlemen, this concludes the exchange ceremony. I would like to inform that Prime Minister Modi will be addressing the media in Hindi. Members of the audience may use the audio device provided to listen to the translation in English and Japanese languages. I now request the spokesperson of the Ministry of External Affairs to conduct the rest of the proceedings.
1: Namaskar, good afternoon, Your Excellency Ms. Takaichi Sanai, Prime Minister of Japan, Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, Honorable Ministers, members of both delegations and friends from the media. We will now have the press statements by the two leaders. May I request Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, to give his remarks to the media.
2: Your Excellency, aur meri choti behan, Pradhanmantri Takaichi ji, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार, कोनिचिवा। इंडिया जापान एनुअल समिट के लिए प्रधानमंत्री ताकाइची का भारत में अपनी पहली यात्रा पर स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। वे जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री भी है और एक दूरदर्शी और लोकप्रिय नेता भी है। इतना ही नहीं, वे जापान के नारा प्रीफेक्चर से आती हैं, जो भारत जापान की साचा बौद्ध विरासत का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। फ्रेंड्स, कुछ ही दिन पहले G7 समिट में मैंने कहा था कि वैश्विक उथल पुथल के आज के माहौल में आपसी विश्वास हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट है और मुझे गर्व है कि भारत जापान की साझेदारी इस कसौटी पर पूरी तरह खरी उतरती है। पिछले कई दशकों में ऑटोमोटिव से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक जापान ने भारत की ग्रोथ स्टोरी का अहम हिस्सेदार बनकर दोस्ती और विश्वास की एक अमूल्य पूंजी बनाई है और आज प्राइम मिनिस्टर ताकाइची की यात्रा से हम अपनी स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं, एक फ्री, प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। फ्रेंड, प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज AI के क्षेत्र में हमने जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय AI इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं। जापान की प्रिसीजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता, इसका संगम वैश्विक AI विकास को नई गति और शक्ति देगा। डिफेंस के क्षेत्र में आज हमने भारत और जापान के पहले को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर एग्रीमेंट किया है। नेवल रेडियो एंटेना यूनिकॉर्न का यह प्रोजेक्ट हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में एक नया अध्याय खोलेगा। अब हम ऐसी डिफेंस टेक्नोलॉजीज को साथ मिलकर विकसित करेंगे जो रीजनल पीस, मैरिटाइम सिक्योरिटी और रूल बेस्ड ऑर्डर को मजबूत करेगी। फार्मा, मेडिकल डिवाइसेस और बायोटेक में आज किए गए एग्रीमेंट से हम ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी में भी योगदान देंगे। भारत का स्केल और जापान की क्वालिटी को जोड़कर हम अफोर्डेबल, रिलायबल और एडवांस हेल्थ सॉल्यूशंस दुनिया तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे। फ्रेंड्स, भारत जापान इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप निरंतर सुदृढ़ हो रही है। पिछले एक वर्ष में करीब 120 नए बिजनेस एग्रीमेंट्स हुए हैं जिनसे भारत में $10 बिलियन से अधिक जापानी इन्वेस्टमेंट आएगा। आज फाइनेंशियल सर्विसेज एजेंसी के बीच एग्रीमेंट से कैपिटल और इन्वेस्टमेंट फ्लोस और सुगम होंगे। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है।

0: के लिए एक ज्वाइंट रोडमैप तैयार किया है। इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी आज हमने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी। इससे हमारी गोवर्धन पहल और मजबूत होगी। इससे भारत के गांवों में सस्टेनेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी और रूरल लाइवलीहुड को नई शक्ति मिलेगी। ऑयल शॉक जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए आज हमने एनर्जी रेजिलियंस पर भी एक महत्वपूर्ण पहल की है। साथ ही बैटरी, ग्रीन हाइड्रोजन और न्यूक्लियर एनर्जी में हमारा सहयोग विश्व के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में महत्वपूर्ण योगदान देगा। भारत और जापान मिलकर इकोनॉमिक सिक्योरिटी को शेयर्ड सिक्योरिटी और एनर्जी ट्रांजिशन को शेयर्ड अपॉर्चुनिटी के रूप में हम लेते हैं और उसको आगे बढ़ाने की दिशा में हम काम करेंगे और उसको बदलेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने भारत जापान नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप फ्रेमवर्क भी तैयार किया है। इससे अब हम ऑटोमोटिव सेक्टर में हमारी सक्सेस स्टोरी को शिप बिल्डिंग, एविएशन और लॉजिस्टिक जैसे क्षेत्रों में भी दोहराएंगे। फ्रेंड्स, हमारे संबंधों की बड़ी ताकत हमारी पीपल टू पीपल टाई है। हम टैलेंट मोबिलिटी, स्किलिंग और टेक्निकल इंटर्नशिप प्रोग्राम इसके अवसर भी बढ़ा रहे हैं और दोनों देशों के बीच रिसर्च, एजुकेशन और स्टार्टअप सहयोग भी सुदृढ़ कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी है कि अगले वर्ष हम भारत जापान डिप्लोमेटिक रिलेशंस की 75वीं एनिवर्सरी मनाने जा रहे हैं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर हम कल्चर, टूरिज्म और क्रिएटिव इकोनॉमी सहयोग से आपसी कनेक्ट और प्रगाढ़ करेंगे। योर एक्सेलेंसी, भारत और जापान की इकोनॉमी कॉम्प्लीमेंट्री है। सांस्कृतिक मूल्यों से लेकर आधुनिक टेक्नोलॉजी तक हमारी सोच और अप्रोच भी समानता है और सबसे बढ़कर हमारे संबंधों की नींव अटूट आपसी विश्वास पर टिकी है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी यह विशेष साझेदारी सशक्त और समृद्ध जापान के आपके विजन, विकसित भारत के हमारे संकल्प और विश्व की प्रगति को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। एक सशक्त और समृद्ध जापान का आपका विजन, विकसित भारत का हमारा संकल्प और पूरे विश्व की प्रगति को मिलकर साकार करें। मैं फिर से एक बार आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरिगतो गोजाइमास।
1: थैंक यू सर। May I now request Her Excellency Ms. Takaichi Sanai, Prime Minister of Japan, to give her remarks to the media.
2: Ladies and
3: gentlemen, good afternoon and namaskar. First and foremost, I would like to extend my heartfelt gratitude to Prime Minister Modi and the people of India for your warm hospitality on the occasion of my visit to your country. You called me a beautiful younger sister, Prime Minister Modi. But at the small meeting before the big meeting, we confirmed that we are on the same page and develop this relationship as brother and sister. Japan and India must leverage our respective strengths to become stronger and more prosperous together. In the midst of international affairs in disarray, the establishment of such intercomplementary cooperative relationship has become ever more important. From such perspective, as Prime Minister Modi and I engaged in discussions over diverse issues, we again were reminded of the many goals we share. And we confirmed to place the following 3 points at the center of our cooperation. First, to deepen the strategic cooperation between Japan and India. Our two countries share the vision on the profile of international order we should establish.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसो थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा,
9: सबका राजा आरती और मसाला।
10: Literally go from the man on the outside looking in, now to the man on the inside looking out.
11: I think that was one of my biggest drivers to become an astronaut.
10: Iron Man, Kokoro, how does that prepare the body for something with no finish line?
11: I would say it prepares the mind more than it prepares the body. I live right next to NDTV in Greater Kailash. In New Delhi.
10: What would that young man in India say if he could see you right now?
11: I'll be up there soon with you.
12: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
13: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter. The stories that shape your life.

0: the show that sets the prime time agenda.
1: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
0: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
2: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
3: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
4: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस
6: 1933। सरसों से सरसों।
7: ऑलराइट, वी बिगिन द ब्रेकफास्ट शो विद अ बिग फोकस व्हिच इज महाराष्ट्र। द मॉनसून इज वंस अगेन टेस्टिंग द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर with heavy rain disrupting transport, flooding low-lying areas, and raising fresh safety concerns. In a worrying incident, two college students suffered electric shocks after allegedly coming into contact with a live wire during heavy rain, and they are undergoing treatment in hospital as we speak. Meanwhile, in Pune, dramatic visuals captured a large tree crashing onto a moving auto rickshaw, as you can see in these visuals, after being uprooted by strong winds and rain. A school child walking nearby escaped unharmed by a matter of seconds there. The rain has also hit Mumbai suburban rail network, with local trains running up to 20 minutes behind schedule, affecting thousands of commuters during the morning rush, especially this morning. Meanwhile, several low-lying areas in Navi Mumbai have been waterlogged after overnight rain. And in areas like Panvel, several low-lying spaces remain waterlogged after overnight rainfall, with intermittent showers continuing. And authorities are set to be monitoring the situation closely this morning.
8: मुंबई में पिछले दो दिनों से लगातार बरसात एक्टिव मोड में आता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल मैं मुंबई के कुर्ला डेपो में उपस्थित हुआ, पीछे देखने की कोशिश करो तो जिस तरीके से लगातार मुंबई के तमाम इलाकों में, वो ठाणे हो, रायगढ़ हो, या इसके अलावा मुंबई का जो अलग निचला स्तर है वहाँ पे लगातार जो है बरसात मुंबई में जो है वो बरसता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर तमाम तरीके के जो है अलग अलग निचले स्तर पे भी देखिए पानी जमने, जल जमाव की स्थिति जो है वो निर्माण हो चुकी है। फिलहाल कुर्ला डेपो की अगर परिस्थिति आप देखने की कोशिश करो तो जिस तरीके से लगातार जिस तरीके से बरसात हो रही है उसको लेकर ये कुर्ला डेपो में जो है बड़े बड़े खड्डे जो है वो निर्माण हो चुके हैं, जिसके चलते अगर आप देखने की कोशिश करें तो जब बस यहाँ से निकलने की कोशिश करी तो जिस तरीके से बस का आधा टायर जो है वो इस खड्डे में जाने की वजह से पूरा बस का जो जो बैलेंस है वो वन साइड जाता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते एक बड़ी दुर्घटना वो मुंबई में हो सकती है। क्योंकि दो दिन पहले हमने देखा जिस तरीके से चेंबूर इलाके में एक झाड़ गिरने से एक 11 वर्षीय बच्चे की मौत हो जाती है, उसी तरीके से मुंबई में भी है जिस तरीके से लगातार जो बरसात है उसको लेकर अलग अलग जगह पे जो है वो जल जमाव की स्थिति निर्माण हो चुकी है। और जिस तरीके से मुंबई महानगर पालिका या राज्य सरकार के अनेक लोगों ने दावा किया था कि मुंबई की अनेक सड़कों को हम कॉन्क्रीटीकरण करें, लेकिन फिलहाल ज़मीनी स्तर पर आप देखने की कोशिश करें तो जिस तरीके से खड्डे यहाँ पे बड़े बड़े निर्माण हो चुके हैं उसको लेकर बस जब इसमें से मार्ग निकलने का प्रयास करी उस दौरान आप देख सकते हो कि आधा बस का टायर जो है वो इस खड्डे में जा रहा है।
9: It's pouring in Mumbai heavily since last night, and the IMD has declared orange alert for Mumbai today and up to Saturday. Right now I am standing at Hindamata area, which is an hotspot area for waterlogging, and you can see waterlogging has started in this area. Also, people are making out their way through this water. The BMC had claimed that the Nali Safai has been done up to 100%, but you can see that the claims that were done by the BMC are totally failing because waterlogging has started in Mumbai. Due to this waterlogging, also traffic congestion will begin in some time because this is early morning and people are getting out of their houses right now to go to their offices. But definitely, due to this waterlogging and traffic congestion, how Mumbaikars will make way till their office is a big question mark in front of them.
10: Hello and welcome to the Southern View. In this 30-minute segment, we'll bring you all updates from down south. We are joined by my colleague Deepak Bopanna from Bengaluru and Ashish from Hyderabad to bring you all the updates. Let's start this segment with the breaking news from Tamil Nadu. TVK leader Adav Arjuna has criticized the ADMK, following that he also hints that ADMK leaders in huge coming towards Tamilaga Vetrikalagam party. He also said as BJP, ADMK and DMK plan to form the government after 2026 election, all the ADMK functionaries, cadre got hurt and they are all

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसों थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।
9: सबका राजा आर्द्र मसाला।
10: Literally go from the man on the outside looking in now to the man on the inside looking out.
11: I think that was one of my biggest drivers to become an astronaut.
10: Iron Man, Kokoro, how does that prepare the body for something with no finish line?
11: I would say it prepares the mind more than it prepares the body. I live right next to NDTV in Greater Kailash. In New Delhi.
10: What would the young man in India say if he could see you right now?
11: I'll be up there soon with you.
12: When others

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: All right, we begin the breakfast show with our big focus, which is Maharashtra. The monsoon is once again testing the urban infrastructure, with heavy rain disrupting transport, flooding low-lying areas, and raising fresh safety concerns. In a worrying incident, two college students suffered electric shocks after allegedly coming into contact with a live wire during heavy rain, and they are undergoing treatment in hospital as we speak. Meanwhile, in Pune, dramatic visuals captured a large tree crashing onto a moving auto rickshaw, as you can see in these visuals, after being uprooted by strong winds and rain. A school child walking nearby escaped unharmed by a matter of seconds there. The rain has also hit Mumbai suburban rail network, with local trains running up to 20 minutes behind schedule, affecting thousands of commuters during the morning rush, especially this morning. Meanwhile, several low-lying areas in Navi Mumbai have been waterlogged after overnight rain. And in areas like Panvel, several low-lying spaces remain waterlogged after overnight rainfall, with intermittent showers continuing. And authorities are set to be monitoring the situation closely this morning.
3: मुंबई में पिछले दो दिनों से लगातार बरसात एक्टिव मोड में आता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल मैं मुंबई के कुर्ला डेपो में उपस्थित हुआ, पीछे देखने की कोशिश करो तो जिस तरीके से लगातार मुंबई के तमाम इलाकों में, वो ठाणे हो, रायगढ़ हो, या इसके अलावा मुंबई का जो अलग निचला स्तर है वहाँ पर लगातार जो है बरसात मुंबई में जो है वो बरसता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर तमाम तरीके के जो है अलग अलग निचले स्तर पर भी देखिए पानी जमने, जल जमाव की स्थिति जो है वो निर्माण हो चुकी है। फिलहाल कुर्ला डेपो की अगर परिस्थिति आप देखने की कोशिश करो तो जिस तरीके से लगातार जिस तरीके से बरसात हो रही है उसको लेकर ये कुर्ला डेपो में जो है बड़े बड़े खड्डे जो है वो निर्माण हो चुके हैं, जिसके चलते अगर आप देखने की कोशिश करें तो जब बस यहाँ से निकलने की कोशिश करी तो जिस तरीके से बस का आधा टायर जो है वो इस खड्डे में जाने की वजह से पूरा बस का जो जो बैलेंस है वो वन साइड जाता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके चलते एक बड़ी दुर्घटना वो मुंबई में हो सकती है। क्योंकि दो दिन पहले हमने देखा जिस तरीके से चेंबूर इलाके में एक झाड़ गिरने से एक 11 वर्षीय

0: पुलिस अब आगे बढ़ रही है। लोनावाला पुलिस, पुणे ग्रामीण पुलिस जो है वो सिया गोयल को लीला कुंज में लेकर आए थे। पुलिस ने तफ्तीश की है और तफ्तीश के बाद पुणे ग्रामीण पुलिस की गाड़ी अब सिया गोयल को लेकर, पुणे ग्रामीण पुलिस के अधिकारी और पुलिस की गाड़ी, इसी गाड़ी में सिया गोयल है, आरोपी सिया गोयल को लेकर पुणे ग्रामीण पुलिस की गाड़ी अब निकल रही है। लगभग 25 मिनट की तहकीकात हुई है और ये गाड़ी निकल चुकी है। सिया गोयल यहाँ पर कम से कम 20 से 25 मिनट पुलिस ने अपनी तफ्तीश की है। काफी सारी इसमें ऐसे चीजें हैं जो अभी सामने नहीं आई है। फॉर एग्जाम्पल, उस समय क्या कपड़े पहने हुए थे, क्या शूज थे, चेतन के भी केस में ही है। इस चीज को लेकर पुणे पुलिस, पुणे रूरल पुलिस बड़ी तफ्तीश कर रही थी। कम से कम 25 मिनट यहाँ पर पुणे रूरल पुलिस की गाड़ी सिया गोयल को लेकर आए थे। काफी क्या तफ्तीश की है रूरल पुलिस से, आगे पता चलेगा।
1: आपके वकील कौन है, मतलब इस केस में सिया गोयल को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है?
2: मेरे वकील जी अभी विपुल जी सर है, जिनको मैंने पूरा यानी कि सिया का केस दिया है। और आशुतोष श्रीवास्तव जी बड़ा नाम है उनका,
1: सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं।
2: हाँ जी, हाँ जी, उनका आज बड़ा नाम है उनका आज। तो मैंने कभी उनको कुछ हायर नहीं किया है और ना इस केस में उनको कुछ यानी कि काम करने का मैंने कुछ कहा है।
1: तो इस केस कौन देख रहा है फिर?
2: विपुल जी सर देख रहे हैं जी।
1: अच्छा, और भी मेरे कुछ सवाल है आपसे। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है आप, जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है?
2: पुलिस अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रही है और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि उन्हें जल्द से जल्द आरोपी का पता चले, ये मेरी भगवान से भी प्रार्थना है।
1: और सिया आरोपी ऑलरेडी है, कल दोषी करार हो गई तो?
2: दोषी करार होती है तो वही सजा है जो केतन जी के साथ हुआ है, ये तो मैंने पहले भी मीडिया में बयान दिया है। और दोषी कोई भी हो, मेरी बेटी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे।
1: सजा को मिलनी चाहिए। बेटी को अगर वो दोषी करार देती है तो वो सजा देने के हक में है?
2: पूरा पूरा हक में है, पूरा हक में। और इमीडिएटली एक्शन लेके ये काम खत्म होना चाहिए।
3: All right, so that was Sia Goyal's father speaking to the media. And earlier today, the police actually brought Sia to her home. So let's take you through the big revelations, what has emerged in the course of the investigations over the last couple of days since the tragic and shocking murder of Ketan Agarwal. What we have learned now is that Ketan Agarwal was actually suspicious of Sia's friendship with Chetan. Remember, he was somebody who she admitted was her friend. Even her parents were aware of him, as was her brother. And it seems Ketan also was suspicious of this friendship because of the amount of time she spent on her phone with him. Ketan had asked his father about Sia's background check after a fight, that the couple had had a fight, and he had asked regarding the background check. Sia had the possession of Ketan's phone after his death. After his death on the 18th of June, when he was pushed from the Lohagar Fort. Now, Sia and Chetan had actually wrecked the kill site multiple times. This is something that has emerged. They had gone to the fort. They'd even practiced on a hill in Pune. The sit-down signal, this is something also that they had discussed closely. They had a phone call just before the actual murder as well, that Sia would sit down and this would ensure that Ketan wouldn't grab Sia and he would fall into the gorge. So that was one of the points that they had discussed. Chetan took a scooter to the fort to avoid detection at the toll plaza, and he'd actually left his phone behind as well at his shop and taken someone else's phone. Sia and Chetan had actually Googled ways to kill and even saw videos on YouTube. This too has emerged in the course of the investigation. Also, that Sia tore Ketan's passport before a trip to Bali that the couple were meant to be taking for a photo shoot there. And this is something we have reported earlier, how she went to the taxi and on the pretext of taking something out. And now it's suspected that that is when she took his passport and tore it up. And that's why they couldn't make that trip. Also, the taxi driver has said that Sia's brother had pushed her into the cab for the Bali trip, that she was reluctant to get into the cab. The police have also said, sources have told us, that Sia had taken 1 crore from Ketan Agarwal ostensibly to shop for the wedding, but she had actually given it to her boyfriend, Chetan Chaudhary. All right, so let's take you through some more developments in the probe into Ketan Agarwal's murder and some of the big revelations that Sia and Chetan hatched the murder plot at a hill. They had gone to a hill in Pune, and that's where they decided that this is how they were going to carry out the murder that they'd already looked up on YouTube.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसों से सरसों।
7: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
8: इंडिया इंक्स मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम्स चोज इंडिया इंक्स बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट।
9: These kind of awards and jury lineup, you are truly giving it the right weightage.
10: The eminent juries who are here, and that itself speaks for the commitment towards highlighting the advantage which India is having. What I am looking for in this is that we should be awarding companies and individuals who have focused not only on growth but also on bringing good governance.
11: Be part of jury and vote on the people, the men, the women, the companies in India who have the right stuff is a great opportunity for us.
8: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards.
12: Literally go from the man on the outside looking in now to the man on the inside looking out.
13: I think that was one of my biggest drivers to become an astronaut.
12: Iron Man, Kokoro, how does that prepare the body for something with no finish line?
13: I would say it prepares the mind more than it prepares the body. I live right next to NDTV in Greater Kailash. In New Delhi.
12: What would the young man in India say if he could see you right now?
13: I'll be up there soon with you.
14: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
15: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
16: अरे मेरे राजा।
17: सबका राजा आर प्योर मसाला।
18: Alright, we begin the breakfast show with our big focus, which is Maharashtra. The monsoon is once again testing the urban infrastructure, with heavy rain disrupting transport, flooding low-lying areas and raising fresh safety concerns. In a worrying incident, two college students suffered electric shocks after allegedly coming into contact with a live wire during heavy rain, and they are undergoing treatment in hospital as we speak. Meanwhile, in Pune, dramatic visuals captured a large tree crashing onto a moving auto rickshaw, as you can see in these visuals, after being uprooted by strong winds and rain. A school child walking nearby escaped unharmed by a matter of seconds there. The rain has also hit Mumbai suburban rail network, with local trains running up to 20 minutes behind schedule, affecting thousands of commuters during the morning rush, especially this morning. Meanwhile, several low-lying areas in Navi Mumbai have been waterlogged after overnight rain. And in areas like Panvel, several low-lying spaces remain waterlogged after overnight rainfall, with intermittent showers continuing. And authorities are set to be monitoring the situation closely this morning.
19: मुंबई में पिछले दो दिनों से लगातार बरसात एक्टिव मोड में आता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल मैं मुंबई के कुर्ला डेपो में उपस्थित हुआ हूं। पीछे देखने की कोशिश करो तो जिस तरीके से लगातार मुंबई के तमाम इलाकों में, वो ठाणे हो, रायगढ़ हो, या इसके अलावा मुंबई का जो अलग निचला स्तर है वहाँ पर लगातार जो है बरसात मुंबई में जो है वो बरसता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर तमाम तरीके के जो है अलग अलग निचले स्तर पर भी देखिए पानी जमने, जल जमाव की स्थिति जो है वो निर्माण हो चुकी है। फिलहाल कुर्ला डेपो की अगर परिस्थिति आप देखने की कोशिश करो तो जिस तरीके से लगातार जिस तरीके से बरसात हो रही है उसको लेकर ये कुर्ला डेपो में जो है बड़े बड़े खड्डे जो है वो निर्माण हो चुके, जिसके चलते अगर आप देखने की कोशिश करें तो जब बस यहां से निकलने की कोशिश करी तो जिस तरीके से बस का पूरा आधा

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: अगर आपके आइडिया में है दम तो कहो वंदे भारतम। अब स्टार्टअप्स कुछ इलाकों तक सीमित नहीं रहेंगे, क्योंकि खुल गया है भारत का सबसे बड़ा ग्रासरूट इनोवेशन मूवमेंट वंदे भारतम। वंदे भारतम .org पर रजिस्टर करो,
2: मिलेगा मेंटरशिप, नेटवर्किंग, इंक्यूबेशन सपोर्ट और एक शानदार नेशनल स्टेज। वंदे भारतम एन इनिशिएटिव बाय गौतम अडानी।
3: देखिए वंदे भारतम का ग्रैंड लॉन्च इवेंट 4 जुलाई दोपहर 1:30 बजे और रिपीट टेलीकास्ट 5 जुलाई दोपहर 12:30 बजे सिर्फ NDTV 24/7 पर।
4: इंडिया इंक्स मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम्स चोज India Inc.'s best and brightest.
5: I'm delighted to be chairing a committee of such distinguished fellow businessmen, bankers. It's just lovely to be back on this NDTV jury. I have been a fan of NDTV for a long time.
6: Many of the nominees are extremely close together in terms of what they've done.
7: Gender parity to be reflected while we choose leadership as well.
8: It's also important that how they are reshaping the industries.
9: We've got a fantastic jury and we've left all decisions to the wisdom of the jury.
4: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards.
10: Literally go from the man on the outside looking in now to the man on the inside looking out.
11: I think that was one of my biggest drivers to become an astronaut.
10: Iron Man, Kokoro, how does that prepare the body for something with no finish line?
11: I would say it prepares the mind more than it prepares the body. I live right next to NDTV in Greater Kailash. In New Delhi.
10: What would the young man in India say if he could see you right now?
11: I'll be up there soon with you.
12: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
13: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
12: अरे मेरे राजा।
14: सबका राजा आर प्योर मसाला।
15: All right, we begin the breakfast show with our big focus, which is Maharashtra. The monsoon is once again testing the urban infrastructure, with heavy rain disrupting transport, flooding low-lying areas, and raising fresh safety concerns. In a worrying incident, 2 college students suffered electric shocks after allegedly coming into contact with a live wire during heavy rain, and they are undergoing treatment in hospital as we speak. Meanwhile, in Pune, dramatic visuals captured a large tree crashing onto a moving auto rickshaw, as you can see in these visuals, after being uprooted by strong winds and rain. A school child walking nearby escaped unharmed by a matter of seconds there. The rain has also hit Mumbai suburban rail network, with local trains running up to 20 minutes behind schedule, affecting thousands of commuters during the morning rush, especially this morning. Meanwhile, several low-lying areas in Navi Mumbai have been waterlogged after overnight rain. And in areas like Panvel, several low-lying spaces remain waterlogged after overnight rainfall, with intermittent showers continuing. And authorities are set to be monitoring the situation closely this morning.
16: मुंबई में पिछले 2 दिनों से लगातार बरसात एक्टिव मोड में आता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल मैं मुंबई के कुर्ला डेपो में उपस्थित हुआ, पीछे देखने की कोशिश करो तो जिस तरीके से लगातार मुंबई के तमाम इलाकों में, वो ठाणे हो, रायगढ़ हो, या इसके अलावा मुंबई का जो अलग निचला स्तर है वहाँ पे लगातार जो है बरसात मुंबई में जो है वो बरसता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर तमाम तरीके के जो है अलग अलग निचले स्तर पर भी देखिए पानी जमने, जल जमाव की स्थिति जो है वो निर्माण हो चुकी है। फिलहाल कुर्ला डेपो की अगर परिस्थिति आप देखने की कोशिश करो तो जिस तरीके से लगातार जिस तरीके से बरसात हुई उसको लेकर ये कुर्ला डेपो में जो है बड़े बड़े खड्डे जो है वो निर्माण हो चुके हैं, जिसके चलते अगर आप देखने की कोशिश करें तो जब बस यहाँ से निकलने की कोशिश करी तो जिस तरीके से बस का आधा टायर जो है वो इस खड्डे में जाने की वजह से पूरा बस का जो जो बैलेंस है वो वन साइड जाता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते एक बड़ी दुर्घटना वो मुंबई में हो सकती है। क्योंकि 2 दिन पहले हमने देखा जिस तरीके से चेंबूर इलाके में एक झाड़ गिरने से एक 11 वर्षीय बच्चे की मौत हो जाती है, उसी तरीके से मुंबई में भी है जिस तरीके से लगातार जो बरसात है उसको लेकर अलग अलग जगह पर जो है वो जल जमाव की स्थिति निर्माण हो चुकी है। और जिस तरीके से मुंबई महानगर पालिका हो या राज्य सरकार के अनेक लोगों ने

0: बात की जाती है कि मुंबई की अनेक सड़कों को हम कॉन्क्रीटीकरण करें, लेकिन फिलहाल जमीनी स्तर पर आप देखने की कोशिश करें तो जिस तरीके से खड्डे यहाँ पे बड़े बड़े निर्माण हो चुके हैं उसको लेकर बस जब इसमें से मार्ग निकलने का प्रयास करी उस दौरान आप देख सकते हो कि आधा बस का टायर जो है वो इस खड्डे में जा रहा है।
1: It's pouring in Mumbai heavily since last night, and the IMD has declared orange alert for Mumbai today and up to Saturday. Right now, I am standing at Hindamata area, which is an hotspot area for waterlogging, and you can see waterlogging has started in this area. Also, people are making out their way through this water. The BMC had claimed that the Nali Safai has been done up to 100%, but you can see that the claims that were done by the BMC are totally failing because waterlogging has started in Mumbai. Due to this waterlogging, also traffic congestion will begin in some time because this is early morning and people are getting out of their houses right now to go to their offices.
2: पावर ग्रिड इक्विपमेंट प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग हो या मेडिकल टेक्नोलॉजी, जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है। फ्रेंड्स, आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। कुछ ही महीने पहले हमने टैक्सेशन, गवर्नेंस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स किए। हम हर क्षेत्र को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल रहे हैं और कई महत्वपूर्ण सेक्टर्स में इंसेंटिव दे रहे हैं जिसका लाभ आप सभी उठा सकते हैं। और यही कारण है कि लगातार पिछले 4 वर्षों से जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन JBIC का सर्वे दिखाता है कि भारत जापानी बिजनेस के लिए मोस्ट प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन रहा है। आज मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूं, मेरा ऑफिस यानी PMO का दफ्तर एक डेडिकेटेड जापान बिजनेस वीक का आयोजन करेगा। इसमें PMO के वरिष्ठ अफसर आपके साथ विचार विमर्श करेंगे, बैठेंगे, आपकी समस्याओं को समझने के लिए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बढ़ाने के लिए आपसे खुले मन से चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, आज प्राइम मिनिस्टर ताकाइची और मैंने अपने साझेदारी को और भी गतिशील और गहरा करने का निर्णय लिया है। हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी, AI, डिफेंस, हेल्थ जैसे अनेक विषयों पर एग्रीमेंट किए, जिसे यह पार्टनरशिप फ्यूचरिस्टिक और लिमिटलेस बन जाएगी। हमारी सरकारों के बीच स्ट्रेटेजिक सिनर्जी है, कॉन्फिडेंस है और सबसे बड़ी बात क्लैरिटी है। अब इसे आउटकम्स में बदलने की जिम्मेदारी आप सभी पर है। फ्रेंड्स, आप सबको मिलकर यह सुनिश्चित करना है कि अगले एक दशक में जापान से भारत में निवेश 10 ट्रिलियन येन के टारगेट को भी पार करे और भारत में जापानीज कंपनीज की संख्या भी 10 वर्ष में डबल हो जाए। फ्रेंड्स, मैं आपके समक्ष एक विजन रखना चाहता हूं। मैं एक ऐसा विश्व देखता हूं जहां जापान की टेक्नोलॉजी और भारत का मार्केट पोटेंशियल मिलकर सेमीकंडक्टर, फार्मा और क्रिटिकल मिनरल्स में दुनिया को रिजिलियंट सप्लाई चेन प्रस्तुत करें दे। जहां जापान का कैपिटल और भारत की एम्बिशन मिलकर शिप बिल्डिंग, मोबिलिटी और क्लीन एनर्जी में नई ग्लोबल लीडरशिप तैयार करें। जहां भारत और जापान के स्टार्टअप से एआई, क्वांटम और बायोटेक में विश्व के नेक्स्ट जनरेशन सॉल्यूशंस आए और एरोस्पेस और डिफेंस में अभूतपूर्व सहयोग से हम ग्लोबल सिक्योरिटी में योगदान मजबूत करें। फ्रेंड्स, आइए ट्रस्ट और ऑप्टिमिज्म से भरी इस साझेदारी से म्यूचुअल ग्रोथ और ग्लोबल गुड का मार्ग प्रशस्त करें। जैसे टोयोटा वाले कहते हैं, आइए मिलकर लेट अस गो प्लेसेस। बहुत बहुत धन्यवाद।
3: Thank you very much, Honorable Prime Minister. Ladies and gentlemen, may I kindly request your attention as their excellencies will now depart the venue. May I kindly request everyone to remain seated and join us in a huge round of applause as they take their leave.
4: The Prime Minister there speaking after holding the meeting with the Japanese Prime Minister. The Prime Minister Narendra Modi also announcing that India and Japan have signed an agreement for their first co-development project in the defense sector, marking a significant step in bilateral strategic cooperation. We saw him there speaking earlier alongside Japanese Prime Minister Takaichi in New Delhi, where he also highlighted Japan's long-standing contribution to India's growth story and the deepening India-Japan partnership, talking about how they will take this relationship even further. Both the countries are deepening their ties. Prime Minister Modi and Japanese Prime Minister held the 16th India-Japan Annual Summit at the Hyderabad House. All right, some breaking news now coming in, and in the Cash for MLA scandal in Tamil Nadu, the TV case hit out at DMK. A Tamil Nadu minister has dared Senthil Balaji, Adhav Arjuna have personal score to settle in Karur, is what he said. Senthil Balaji's brother arrested in this case and topple Vijay government plot. Remember, this is the big story in Tamil Nadu, where it is being alleged that TVK MLAs were being offered huge sums of money. Now, Adhav Arjuna says won't rest till the Karur issue is settled.
5: எனக்கு கரூர் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஊர். ஒரு ஒரு கணக்கு வழக்கு இருக்கு. அந்த கணக்கு வழக்கை முடிக்காம விட மாட்டோம். முடிக்காம விட மாட்டோம். இதே மண்டலத்தில் சொன்னோம். எங்க தலைவரை

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसों
7: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
8: India Inc.'s most respected names chose India Inc.'s best and brightest.
9: I'm delighted to be chairing a committee of such distinguished fellow businessmen, bankers. It's just lovely to be back on this NDTV jury. I have been a fan of NDTV for a long time.
10: Many of the nominees are extremely close together in terms of what they've done.
11: I think it's also important that how they are reshaping the industries, commercial activities which they are into. And it's a very judicious mix of people to choose from. My compliments to the team.
8: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards.
12: अगर आपके आइडिया में है दम तो कहो वंदे भारतम। अब स्टार्टअप्स कुछ इलाकों तक सीमित नहीं रहेंगे क्योंकि खुल गया है भारत का सबसे बड़ा ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट वंदे भारतम। vandebharatam.org पर रजिस्टर करो।
13: मिलेगा मेंटरशिप, नेटवर्किंग, इंक्यूबेशन सपोर्ट और एक शानदार नेशनल स्टेज। वंदे भारतम एन इनिशिएटिव बाय गौतम अडानी।
14: देखिए वंदे भारतम का ग्रैंड लॉन्च इवेंट 4 जुलाई दोपहर 1:30 बजे और रिपीट टेलीकास्ट 5 जुलाई दोपहर 12:30 बजे सिर्फ NDTV 24/7 पर।
15: All right, we begin the breakfast show with our big focus, which is Maharashtra. The monsoon is once again testing the urban infrastructure, with heavy rain disrupting transport, flooding low-lying areas, and raising fresh safety concerns. In a worrying incident, 2 college students suffered electric shocks after allegedly coming into contact with a live wire during heavy rain. And they are undergoing treatment in hospital as we speak. Meanwhile, in Pune, dramatic visuals captured a large tree crashing onto a moving auto rickshaw, as you can see in these visuals, after being uprooted by strong winds and rain. A school child walking nearby escaped unharmed by a matter of seconds there. The rain has also hit Mumbai suburban rail network, with local trains running up to 20 minutes behind schedule, affecting thousands of commuters during the morning rush, especially this morning. Meanwhile, several low-lying areas in Navi Mumbai have been waterlogged after overnight rain. And in areas like Panvel, several low-lying spaces remain waterlogged after overnight rainfall, with intermittent showers continuing. And authorities are set to be monitoring the situation closely this morning.
16: मुंबई में पिछले 2 दिनों से लगातार बरसात एक्टिव मोड में आता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल मैं मुंबई के कुर्ला डेपो में उपस्थित हुआ, पीछे देखने की कोशिश करूँ तो जिस तरीके से लगातार मुंबई के तमाम इलाकों में, वो ठाणे हो, रायगढ़ हो, या इसके अलावा मुंबई का जो अलग निचला स्तर है वहाँ पर लगातार जो है बरसात मुंबई में जो है वो बरसता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर तमाम तरीके के जो है अलग अलग निचले स्तर पर भी देखिए पानी जमने, जल जमाव की स्थिति जो है वो निर्माण हो चुकी है। फिलहाल कुर्ला डेपो की अगर परिस्थिति आप देखने की कोशिश करो तो जिस तरीके से लगातार जिस तरीके से बरसात रही, उसको लेकर ये कुर्ला डिपो में जो है बड़े बड़े खड्डे जो है वो निर्माण हो चुके हैं, जिसके चलते अगर आप देखने की कोशिश करें तो जब बस यहाँ से निकलने की कोशिश करी तो जिस तरीके से बस का आधा टायर जो है वो इस खड्डे में जाने की वजह से पूरा बस का जो जो बैलेंस है वो वन साइड जाता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके चलते एक बड़ी दुर्घटना वो मुंबई में हो सकती है। क्योंकि 2 दिन पहले हमने देखा जिस तरीके से चेंबूर इलाके में एक झाड़ गिरने से एक 11 वर्षीय बच्चे की मौत हो जाती है, उसी तरीके से मुंबई में भी जिस तरीके से लगातार जो बरसात है उसको लेकर अलग अलग जगह पर जो है वो जल जमाव की स्थिति निर्माण हो चुकी है। और जिस तरीके से

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसों मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
7: इंडिया इंक्स मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम्स चोज इंडिया इंक्स बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट।
8: These kind of awards and jury lineup, you are truly giving it the right weightage.
9: The eminent juries who are here, and that itself speaks for the commitment towards highlighting the advantage which India is having. What I am looking for in this is that we should be awarding companies and individuals who have focused not only on growth but also on bringing good governance.
10: Be part of jury and vote on the people, the men, the women, the companies in India who have the right stuff is a great opportunity for us.
7: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards.
11: अगर आपके आइडिया में है दम तो कहो वंदे भारतम। अब स्टार्टअप्स कुछ इलाकों तक सीमित नहीं रहेंगे, क्योंकि खुल गया है भारत का सबसे बड़ा ग्रासरूट इनोवेशन मूवमेंट वंदे भारतम। vandebharatam.org पर रजिस्टर करो,
12: मिलेगा मेंटरशिप, नेटवर्किंग, इंक्यूबेशन सपोर्ट और एक शानदार नेशनल स्टेज। वंदे भारतम एन इनिशिएटिव बाय गौतम अडानी।
13: देखिए वंदे भारतम का ग्रैंड लॉन्च इवेंट 4 जुलाई दोपहर 1:30 बजे और रिपीट टेलीकास्ट 5 जुलाई दोपहर 12:30 बजे सिर्फ NDTV 24/7 पर।
14: 5 hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddaramaiah.
15: NDTV stands completely engaged with Karnataka.
16: High rate, check the audio.
14: Let's do it, let's start.
17: Breaking story, we're jumping straight into it.
14: We've got a picture of the letter. What is in your letter? You can never predict what's going to happen in Tamil Nadu politics.
18: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
19: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
20: For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
21: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
22: The line of control, Shiv Arur, NDTV.
23: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
24: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
25: अरे मेरे राजा।
26: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
27: Alright, we begin the breakfast show with our big focus, which is Maharashtra. The monsoon is once again testing the urban infrastructure, with heavy rain disrupting transport, flooding low-lying areas, and raising fresh safety concerns. In a worrying incident, 2 college students suffered electric shocks after allegedly coming into contact with a live wire during heavy rain, and they are undergoing treatment in hospital as we speak. Meanwhile, in Pune,

0: It's a very fair, very equitable. It's a deal that gives us preferential access to the United States market.
1: Straight to our top focus this evening, ladies and gentlemen, the investigation into Ketan Agarwal murder case has entered a crucial phase, with the Pune Rural Police moving to conduct a polygraph test on the two prime accused, Siya Goyal and Chetan Chaudhary. The government prosecutor has confirmed that the legal process for the lie detector examination is now underway, and investigators are expected to cross-check the accused's statements based on the test findings. Meanwhile, you know, amidst all what is happening, sources have also told NDTV that Siya had, in fact, gone to the very hill to somehow, you know, in Pune, where the murder plot was hatched and allegedly also practiced. They did a dress rehearsal of sorts as far as this entire murder is concerned. The investigators believe Siya and Chetan practiced how they were going to conduct this entire plot, in fact, how they are going to push Ketan to ensure that there is nothing is left to chance, and of course they are able to get away with this murder. Now, sources are also telling us that the spot was located close to Siya's residence and is now being examined as police continues to reconstruct the entire sequence of events.
2: Siya Goyal ko police apni taftish ke baad Lonawala police Siya Goyal ko unke ghar se ghar pe laake taftish karke police ab aage badh rahi hai. Lonawala police Pune gramin police jo hai wo Siya Goyal ko Leela Kunj mein lekar aaye the. Police ne taftish ki hai aur taftish ke baad Pune Gramin Police ki gaadi ab Siya Goyal ko lekar Pune Gramin Police ke adhikari aur police ki gaadi isi gaadi mein Siya Goyal hai ROP Siya Goyal ko lekar Pune Gramin Police ki gaadi ab nikal rahi hai lagbhag 25 minute ki tahqeeqat hui hai aur ye gaadi nikal chuki hai Siya Goyal yahan par kam se kam 20 se 25 minute police ne apni taftish ki hai kafi sari isme aise cheeze hain jo abhi samne nahi aayi hai for example उस समय क्या कपड़े पहने हुए थे क्या शूज थे चेतन के भी केस में यही है इस चीज को लेकर पुणे रूरल पुलिस बड़ी तफ्तीश कर रही थी कम से कम 25 मिनट यहां पर पुणे रूरल पुलिस की गाड़ी सिया गोयल को लेकर आए थे काफी क्या तफ्तीश की है रूरल पुलिस से आगे पता चलेगा
3: आपके वकील कौन है मतलब इस केस में सिया गोयल को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है
4: मेरे वकील जी अभी विपुल जी सर है जिनको मैंने पूरा यानी कि सिया का केस दिया है और आशुतोष श्रीवास्तव जी बड़ा नाम है उनका
3: सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं
4: हाँ जी उनका आज बड़ा नाम है उनका आज तो मैंने कभी उनको कुछ हायर नहीं किया है और ना इस केस में उनको कुछ यानी कि काम करने का मैंने कुछ कहा है
3: तो इस केस कौन देख रहा है फिर
4: विपुल जी सर देख रहे हैं जी
3: अच्छा और भी मेरे कुछ सवाल है आपसे पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है आप जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है
4: पुलिस अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रही है और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि उन्हें जल्द से जल्द आरोपी का पता चले ये मेरी भगवान से भी प्रार्थना है
3: और सिया आरोपी ऑलरेडी है कल दोषी करार हो गई तो
4: दोषी करार होती है तो वही सजा है जो केतन जी के साथ हुआ है ये तो मैंने पहले भी मीडिया में बयान दिया है और दोषी कोई भी हो मेरी बेटी हो कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे
3: सजा एक बाप को मिलनी अपनी बेटी को अगर वो दोषी करार देती है तो वो सजा देने के हक में है
4: पूरा हक में और इमीडिएटली एक्शन लेके ये काम खत्म होना चाहिए
1: Right, so NDTV has been tracking this story. Let me also now bring you what we have been able to gather from the police during this investigation. Some big revelations coming your way as far as this sensational case is concerned. Number one, Siya Chetan hatched the murder plot at the Lulanagar Hill. And this is where they had gone and also, in fact, recce'd for the perfect spot. Siya and Chetan rehearsed the crime at the hill. They didn't leave anything to chance. Siya and Chetan then practiced how they are going to, in fact, carry out this entire crime. How they will push, which the spot from where they will be pushing Ketan. Hill was located close to Sia's residence, and this is where Ketan on that fateful night

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: वी आर ओवर जिमी।
2: हे लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
3: All right, we begin the breakfast show with our big focus, which is Maharashtra. The monsoon is once again testing the urban infrastructure, with heavy rain disrupting transport, flooding low-lying areas, and raising fresh safety concerns. In a worrying incident, two college students suffered electric shocks after allegedly coming into contact with a live wire during heavy rain, and they are undergoing treatment in hospital as we speak. Meanwhile, in Pune, dramatic visuals captured a large tree crashing onto a moving auto rickshaw, as you can see in these visuals, after being uprooted by strong winds and rain. A school child walking nearby escaped unharmed by a matter of seconds there. The rain has also hit Mumbai suburban rail network, with local trains running up to 20 minutes behind schedule, affecting thousands of commuters during the morning rush, especially this morning. Meanwhile, several low-lying areas in Navi Mumbai have been waterlogged after overnight rain. And in areas like Panvel, several low-lying spaces remain waterlogged after overnight rainfall, with intermittent showers continuing. And authorities are set to be monitoring the situation closely this morning.
4: मुंबई में पिछले दो दिनों से लगातार बरसात एक्टिव मोड में आता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल मैं मुंबई के कुर्ला डेपो में उपस्थित हुआ, अगर पीछे देखने की कोशिश करो तो जिस तरीके से लगातार मुंबई के तमाम इलाकों में, वो ठाणे हो, रायगढ़ हो, या इसके अलावा मुंबई का जो अलग निचला स्तर है वहाँ पर लगातार जो है बरसात मुंबई में जो है वो बरसता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर तमाम तरीके के जो है अलग अलग निचले स्तर पर भी देखिए पानी जमने, जल जमाव की स्थिति जो है वो निर्माण हो चुकी है। फिलहाल कुर्ला डेपो की अगर परिस्थिति आप देखने की कोशिश करो तो जिस तरीके से लगातार जिस तरीके से बरसात हो रही है उसको लेकर ये कुर्ला डेपो में जो है बड़े बड़े खड्डे जो है वो निर्माण हो चुके, जिसके चलते अगर आप देखने की कोशिश करें तो जब बस यहाँ से निकलने की कोशिश करी तो जिस तरीके से बस का आधा टायर जो है वो इस खड्डे में जाने की वजह से पूरा बस का जो जो बैलेंस है वो वन साइड जाता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते एक बड़ी दुर्घटना वो मुंबई में हो सकती है, क्योंकि

0: Musk government. That government itself is quite struggling at the moment. So to rally support from across, you know, the country, they have taken many measures. This is just one of them. Whether this will backfire, whether this will have a positive effect or not, that remains to be seen. But Germany seems to be in a desperate situation right now. Even they have also talked about, you know, record levels of defense spending. That particularly comes from the transatlantic side. US has been putting a lot of pressure on US, Germany. So a lot of different pressures exerted on Germany, and that has resulted in this decision.
1: Thank you, Vishal, for joining us with all those details. Does that improve productivity, or does that make people more anguished that you know, their right for sick leave has also been taken away from the companies as far as Germany is concerned? We will have to wait and see how this plays out. All right, let's move on to our next story. India and Japan have elevated their strategic partnership with a series of major announcements following bilateral talks between Prime Minister Modi and Japanese Prime Minister Takashi, in fact, in New Delhi on her visit. The two leaders unveiled an ambitious roadmap, focused on artificial intelligence, semiconductors, defense, technology, energy, security, and resilient supply chains as well. A joint statement on artificial intelligence was issued, while India and Japan also signed their first ever defense co-development project involving the naval radio antenna Unicorn.
2: अगले एक दशक में जापान से भारत में निवेश 10 ट्रिलियन येन के टारगेट को भी पार करे और भारत में जापानीज कंपनीज की संख्या भी 10 वर्ष में डबल हो जाए. फ्रेंड्स, मैं आपके समक्ष एक विजन रखना चाहता हूं. मैं एक ऐसा विश्व देखता हूं जहां जापान की टेक्नोलॉजी और भारत का मार्केट पोटेंशियल मिलकर सेमीकंडक्टर, फार्मा और क्रिटिकल मिनरल्स में दुनिया को रिजिलियंट सप्लाई चेन प्रस्तुत करें दे. जहां जापान का कैपिटल और भारत की एम्बिशन मिलकर शिप बिल्डिंग, मोबिलिटी और क्लीन एनर्जी में नई ग्लोबल लीडरशिप तैयार करें. जहां भारत और जापान के स्टार्टअप से एआई, क्वांटम और बायोटेक में विश्व के नेक्स्ट जनरेशन सॉल्यूशंस आए.
3: Ladies and gentlemen, good afternoon and namaskar. First and foremost, I would like to extend my heartfelt gratitude to Prime Minister Modi and the people of India for your warm hospitality on the occasion of my visit to your country. You called me a beautiful younger sister, Prime Minister Modi. But at the small meeting before the big meeting, we confirmed that we are on the same page and develop this relationship as brother and sister. Japan and India must leverage our respective strengths to become stronger and more prosperous together. In the midst of international affairs in disarray, the establishment of such intercomplementary cooperative relationship has become ever more important. From such perspective, as Prime Minister Modi and I engaged in discussions over diverse issues, we again were reminded of the many goals we share.
1: Well, on the occasion of the visit of the Japanese Prime Minister, NDTV is, of course, organizing a day-long NDTV India-Japan Summit. And let me get you a heartwarming, in fact, moment from that celebration. I mean, this is what celebrates the cultural connect between India and Japan. Japanese influencer and content creator Mayo Murasaki was at the NDTV Summit. She surprised everyone by speaking in Hindi. And in this strategic dialogue that NDTV has organized, she shared the very first Hindi words she learned, recalling that the first Hindi film she watched, and also leaving us with a mesmerizing performance. Take a look.
4: बहुत कम ऐसा होता है कि हमारे पास मेहमान आए और इस तरीके से हमें एनर्जी दें, हमें उन्हें एनर्जी देनी पड़ती है. एंड व्हाई आई एम आल्सो स्विचिंग टू हिंदी इज दैट शी स्पीक्स एब्सोल्युटली लवली हिंदी. सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगी मायो?
5: बहुत बहुत धन्यवाद इकट्ठे होने के लिए. मैं हूँ हिंदी बोलने वाली जापानी लड़की. मैंने हिंदी में बीए किया है जापान में ओसाका यूनिवर्सिटी में. और अच्छा थैंक यू. और हाँ, और यूट्यूबर बन गई एंड आज मैं यहाँ बैठी हूँ. सो थैंक यू सो मच.
4: आपकी सीरीज मोशी मोशी मुंबई बहुत कमाल की है. अगर आप में से किसी ने चेक नहीं की तो यूट्यूब पर आप वो जरूर देख सकते हैं. नाउ यू नो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज अ लिटिल बिट ऑब्वियस,
5: ओके,
4: बट आई एम रियली क्यूरियस टू नो द आंसर. इज इंडिया योर होम नाउ?
5: यस.
4: इज इट होम?
5: यस.
4: एंड कैन यू आल्सो शेयर व्हाट मेड इट योर होम? एनी मोमेंट व्हेन यू रियलाइज ओके ये मेरा घर है?
5: सो अभी मैं मुंबई में रहते हूँ. एक साल पहले मैं मुंबई शिफ्ट हो गई. एंड उससे पहले देर वॉज अ रीज़न दैट द मेड मी होम इन मुंबई. सो देर इज़ वन पर्टिकुलर इंडियन फैमिली हु हैज़ बीन रिसीविंग मी एज अ होस्ट फैमिली. सो नाउ द होस्ट मदर ऑफ द हाउस इज एक्चुअली द कोरियोग्राफर ऑफ घूमर. सो शी इज़ वेरी कल्चरल पर्सन एंड वेरी नाइस. एंड शी हैज़ बीन टीचिंग मी सो मेनी थिंग्स अबाउट इंडियन कल्चर.
4: क्या पसंद करती हैं आप खाना हिंदुस्तानी खाने में?
5: आलू पराठा.
4: सुबह सुबह आपने क्या बोल दिया यार, सबके मुंह में पानी आ चुका है आलू का पराठा सुनने के बाद.
5: इट्स रियली गुड.
6: कोई कर सके

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसों थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।
9: सबका राजा आर्थर मसाला।
10: We are over, Jimmy.
11: Hey, life में scratches तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
12: इंडिया इंक्स मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम्स चोज इंडिया इंक्स बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट।
13: आई एम डिलाइटेड टू बी चेयरिंग मीटिंग ऑफ सच डिस्टिंग्विश्ड फेलो बिजनेसमैन बैंकर्स। यू नो इट्स जस्ट लवली टू यू नो बी बैक ऑन दिस एनडीटीवी jury. I have been a fan of NDTV for a long time.
14: Many of the nominees are extremely close together in terms of what they've done.
15: Gender parity to be reflected in while we choose leadership as well.
16: It's also important that how they are reshaping the industries.
17: We've got a fantastic jury and we've left all decisions to the wisdom of the jury.
12: Who will earn India's top business honors?

0: सास बा।
1: वाओ मामा क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: सबका राजा और प्योर मसाला।
3: We are over जिमी।
4: Hey, life में scratches तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
5: इंडिया इंक्स मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम्स चोज इंडिया इंक्स बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट।
6: आई एम डिलाइटेड टू बी चेयरिंग द कंपनी ऑफ सच डिस्टिंग्विश्ड फेलो बिजनेसमैन बैंकर्स यू नो इट्स जस्ट लवली टू यू नो बी बैक ऑन दिस एनडीटीवी jury. I have been a fan of NDTV for a long time.
7: Many of the nominees are extremely close together in terms of what they've done.
8: Gender parity to be reflected in while we choose leadership as well.
9: It's also important that how they are reshaping the industries.
10: We've got a fantastic jury and we've left all decisions to the wisdom of the jury.
5: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards.
11: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, everyday.
12: अगर आपके आइडिया में है दम तो कहो वंदे भारतम। अब स्टार्टअप्स कुछ इलाकों तक सीमित नहीं रहेंगे क्योंकि खुल गया है भारत का सबसे बड़ा ग्रासरूट इनोवेशन मूवमेंट वंदे भारतम। vandebharatam.org पर रजिस्टर करो।
13: मिलेगा मेंटरशिप, नेटवर्किंग, इंक्यूबेशन सपोर्ट और एक शानदार नेशनल स्टेज वंदे भारतम, एन इनिशिएटिव बाय गौतम अडानी।
14: देखिए वंदे भारतम का ग्रैंड लॉन्च इवेंट 4 जुलाई दोपहर 1:30 बजे और रिपीट टेलीकास्ट 5 जुलाई दोपहर 12:30 बजे सिर्फ NDTV 24/7 पर।
5: इंडिया इंक्स मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम्स चोज इंडिया इंक्स बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट।
6: दीज काइंड ऑफ अवार्ड्स एंड यू नो ज्यूरी लाइनअप यू आर ट्रूली गिविंग इट द राइट वेटेज।
15: आई थिंक इट्स हार्टनिंग टू सी टैलेंट दैट देयर इज इन across India Inc.
16: We should be awarding companies and individuals who have focused not only on growth but also on bringing good governance.
17: Be part of jury and vote on the people, the men, the women, the companies in India who have the right stuff is a great opportunity for us.
18: For us, the biggest thing is trust. That's what we provide.
19: We need leaders in India that can help take India being a global superpower.
10: We've got a fantastic jury and we've left all decisions to the wisdom of the jury.
5: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards.
20: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli. Swadisht, sehatmand, har roz.
21: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
22: कुछ तो बात है इस दिल में।
23: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस
24: 1933। सरसों से सरसों।
25: ऑलराइट, वी बिगिन द ब्रेकफास्ट शो विद अ बिग फोकस व्हिच इज महाराष्ट्र। द मॉनसून इज वंस अगेन टेस्टिंग द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर विद हैवी रेन डिस्टर्बिंग ट्रांसपोर्ट, फ्लडिंग लो लाइंग एरियाज एंड रेजिंग फ्रेश सेफ्टी कंसर्न्स। In a worrying incident, two college students suffered electric shocks after allegedly coming into contact with a live wire during heavy rain, and they are undergoing treatment in hospital as we speak. Meanwhile, in Pune, dramatic visuals captured a large tree crashing onto a moving auto rickshaw. As you can see,
26: welcome back. Do you know how many zeros are there when I say 12,000 crore? Let's count it together, ladies and gentlemen. 12,000 crore, because that's an important figure that you need to remember. So if I say 12,000 crore rupees, and I'll tell you the number of zeros, let's count them. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 and 11 zeros is in fact the cost of construction of a highway. A super highway which has been made to reduce the distance between Delhi and Dehradun. 12,000 crore rupees have been spent on this highway. And we should hail the construction quality of this highway because it could not even withstand the first monsoon. This section of the Delhi-Dehradun expressway near Sham

0: finally caved in. And let's play out those visuals now of what the video which has gone viral following just one heavy overnight rainfall, raising serious concerns about the durability of the recently inaugurated highway. Now, videos of the damaged stretch quickly circulated, went viral, showing the depression on the road, and it could have, in fact, created a massive safety issue. Thank God, in a country like ours, where you've seen people dying on potholes and manholes and open manholes and trees falling, nobody, in fact, died as far as those highways are concerned. Let's just play out those visuals of the which have gone viral of those of that depression, please. And the incident occurred near a village in Shamli district. The problem came to light after motorists shared visuals where a portion of this road was caved in. Now, the Delhi-Dehradun expressway, spanning over 200 kilometers, was inaugurated on April 14 this year itself. Just this year, in 2026, in April, and today we are standing in July, built at an estimated cost of 12,000 crore rupees, 12 and 11 zeros, remember that. The Delhi-Dehradun expressway is a major infrastructural project. It was supposed to reduce time, but look at the construction quality. NHA has also come out with their clarification on this, but first listen in to what my colleagues found out on the spot.
1: यहाँ पर एनडीटीवी की टीम जो पहुंची है आपको दिखाना चाहूंगा कि जो ये तारकोल है ये बन रहा है और आपको दिखाना चाहूंगा कि ये हमारे पास इंची टेप है आप देख सकते हैं इससे मैं नापूंगा कि कितना बड़ा जो गड्ढा है वो लगभग हुआ है और आप देख सकते हैं यहाँ पर आइए मैं दिखाना चाहूंगा कि ये जो इंची टेप से जो नाप रहे हैं ये लगभग यहाँ से 53 इंच जो है वो यहाँ पर गड्ढा हुआ था जो कि अब इसको NHAI द्वारा ठीक किया जा रहा है और मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये लगभग 12,000 करोड़ रुपए में तैयार किया गया था लेकिन उसके बाद जो है दिल्ली से देहरादून लगभग 2 से 2.5 घंटे के अंदर दूरी तय की जाती है और यहाँ पर आपको बता दें कि जो गाड़ियों की जो स्पीड थी यहाँ पर जो है ये रोड़ी जो है ये बाहर निकली हुई है और मैं इंची टेप से दोबारा जो दूसरा गड्ढा था वो आपको नाप कर दिखाना चाहूंगा कि कैमरामैन को कहूंगा कि इंची टेप दिखाए कितने सेंटीमीटर का ये गड्ढा है यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ से और ये देखिए आप ये लगभग इंची टेप है यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप जरा पास आइए मैं कहूँगा कैमरामैन को कि ये इंची टेप दिखाए कि कितना ये यहाँ से बड़ा गड्ढा जो था ये हुआ है ये देखिए 60 सेंटीमीटर ये यहाँ पर है ये 60 सेंटीमीटर यहाँ पर है जो इंची टेप से हमने नापाया गड्ढा और यहाँ से हम आगे नापेंगे कि कितना बड़ा गड्ढा ये और हुआ है और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं नापूंगा कि यहाँ से लेकर के और ये गड्ढा जो है इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 60 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर लगभग 100 सेंटीमीटर का ये गड्ढा था जो कि यहाँ पर हुआ था जिसके बाद वीडियो वायरल हुई और NHAI वाले हरकत में आए हरकत में आने के बाद ये आप देख सकते हैं ये काम शुरू हो गया है
0: Now NHAI is doing the patchwork there and now they are saying it happened because of water stagnation and we are now once again making arrangements for the water to be in fact taken out of that. A new drain will be built. What were you doing when this whole thing of 12,000 crore was built? This is an ode to the construction quality of things that happen in India. That's all the time that I have at this edition. I'll be back tomorrow, same place, same time. Thank you so much. Stay safe.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसों थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा,
9: सबका राजा आर प्योर मसाला।

0: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
1: इंडिया इंक्स मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम्स चोज इंडिया इंक्स बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट।
2: I'm delighted to be chairing a committee of such distinguished fellow businessmen, bankers. It's just lovely to be back on this NDTV jury. I have been a fan of NDTV for a long time.
3: Many of the nominees are extremely close together in terms of what they've done.
4: Gender parity to be reflected while we choose leadership as well.
5: It's also important that how they are reshaping the industries.
6: We've got a fantastic jury and we've left all decisions to the wisdom of the jury.
1: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards.
7: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
8: अगर आपके आइडिया में है दम तो कहो वंदे भारतम। अब स्टार्टअप्स कुछ इलाकों तक सीमित नहीं रहेंगे क्योंकि खुल गया है भारत का सबसे बड़ा ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट वंदे भारतम। vandebharatam.org पर रजिस्टर करो,
9: मिलेगा मेंटरशिप, नेटवर्किंग, इंक्यूबेशन सपोर्ट और एक शानदार नेशनल स्टेज। वंदे भारतम एन इनिशिएटिव बाय गौतम अडानी।
10: देखिए वंदे भारतम का ग्रैंड लॉन्च इवेंट 4 जुलाई दोपहर 1:30 बजे और रिपीट टेलीकास्ट 5 जुलाई दोपहर 12:30 बजे सिर्फ NDTV 24/7 पर।
1: इंडिया इंक्स मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम्स चोज इंडिया इंक्स बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट।
2: दीज काइंड ऑफ अवार्ड्स एंड ज्यूरी लाइनअप, यू आर ट्रूली गिविंग इट द राइट वेटेज।
11: आई थिंक इट्स हार्टनिंग टू सी टैलेंट दैट देयर इज इन across India Inc.
12: We should be awarding companies and individuals who have focused not only on growth but also on bringing good governance.
13: Be part of jury and vote on the people, the men, the women, the companies in India who have the right stuff is a great opportunity for us.
14: For us, the biggest thing is trust. That's what we provide.
15: We need leaders in India that can help take India being a global superpower.
6: We've got a fantastic jury and we've left all decisions to the wisdom of the jury.
1: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards.
7: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
16: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
17: कुछ तो बात है इस दिल में।
18: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
19: सरसों से सरसों। ऑलराइट, वी बिगिन द ब्रेकफास्ट शो विद अ बिग फोकस व्हिच इज महाराष्ट्र। द मॉनसून इज वंस अगेन टेस्टिंग द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर विद हैवी रेन डिस्टर्बिंग ट्रांसपोर्ट, फ्लडिंग लो लाइंग एरियाज एंड रेजिंग फ्रेश सेफ्टी कंसर्न्स। In a worrying incident, two college students suffered electric shocks after allegedly coming into contact with a live wire during heavy rain, and they are undergoing treatment in hospital as we speak. Meanwhile, in Pune, dramatic visuals captured a large tree crashing onto a moving auto rickshaw, as you can see in these visuals, after being uprooted by strong winds and rain. A school child walking nearby escaped unharmed by a matter of seconds there. The rain has also hit Mumbai suburban rail network, with local trains running up to 20 minutes behind schedule, affecting thousands of commuters during the morning rush, especially this morning. Meanwhile, several low-lying areas in Navi Mumbai have been waterlogged after overnight rain. And in areas like Panvel, several low-lying spaces remain waterlogged after overnight rainfall, with intermittent showers continuing. And authorities are set to be monitoring the situation closely this morning.
20: मुंबई में पिछले दो दिनों से लगातार बरसात एक्टिव मोड में आता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल मैं मुंबई के कुर्ला डेपो में उपस्थित हुआ, पीछे देखने की कोशिश करूँ तो जिस तरीके से लगातार मुंबई के तमाम इलाकों में, वो ठाणे हो, रायगढ़ हो या इसके अलावा मुंबई का जो अलग निचला स्तर है, वहाँ पर लगातार जो है बरसात मुंबई में जो है वो बरसता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर तमाम तरीके के जो है अलग अलग निचले स्तर पर भी देखिए पानी जमने, जल जमाव की स्थिति जो है वो निर्माण हो चुकी है। फिलहाल कुर्ला डेपो की अगर परिस्थिति आप देखने की कोशिश करो तो जिस तरीके से लगातार बरसात हुई उसको लेकर ये कुरला डिपो में जो है बड़े बड़े खड्डे जो है वो निर्माण हो चुके, जिसके चलते अगर आप देखने की कोशिश करें तो जब बस यहाँ से निकलने की कोशिश करी तो जिस तरीके से बस का आधा टायर जो है वो इस खड्डे में जाने की वजह से पूरा बस का जो जो बैलेंस है वो वन साइड जाता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके चलते एक बड़ी दुर्घटना वो मुंबई में हो सकती है। क्योंकि दो दिन पहले हमने देखा जिस तरीके से चेंबूर इलाके में एक झाड़ गिरने से एक 11 वर्षीय बच्चे की मौत हो जाती है, उसी तरीके से मुंबई में भी है जिस तरीके से लगातार जो बरसात है उसको लेकर अलग अलग जगह पर जो है वो जल जमाव की स्थिति निर्माण हो चुकी है। और जिस तरीके से मुंबई महानगर पालिका हो या राज्य सरकार के अनेक लोगों ने दावा किया था कि मुंबई की अनेक सड़कों को हम कॉन्क्रीटीकरण करें, लेकिन फिलहाल ज़मीनी स्तर पर आप देखने की कोशिश करें तो जिस तरीके से खड्डे यहाँ पर बड़े बड़े निर्माण हो चुके हैं उसको लेकर बस जब इसमें से मार्ग निकलने का प्रयास करी उस दौरान आप देख सकते हो कि आधा बस का टायर जो है वो इस खड्डे में जा रहा है।
17: It's pouring in Mumbai heavily since last night, and the IMD has declared orange alert for Mumbai today and up to Saturday. Right now, I am standing at Hindamata area, which is an hotspot area for waterlogging, and you can see waterlogging has started in this area. Also, people are making out their way through this water. The BMC had claimed that the Nali Safai has been done up to 100%, but you can see that the claims that were done by the BMC are totally failing because waterlogging has started in Mumbai. Due to this waterlogging, also traffic congestion will begin in some time because this is early morning and people are getting out of their houses right now to go to their offices. But definitely, due to this waterlogging and traffic congestion, how Mumbaikars will make way till their office is a big question mark in front of them. The railway lines have also been disrupted because the Western Railway is running 10 to 15 minutes late and the Central Railway is running 5 to 7 minutes late.
19: My colleague Abhishek Awasthi has been tracking the latest details for us. He joins us live this morning from Mumbai. Abhishek, to begin with, which parts of Mumbai, Navi Mumbai and Pune remain the worst affected this morning?
21: Definitely, you know, as per the latest update from the weather forecast.
22: Summer mein balti to chahiye for your paseena.
23: Balti.
22: Aur monsoon mein balti to chahiye for chhat ka paseena. पसीना मत बहाओ, बर्जर रूफ कूलेंट सील लगाओ, ये छत के क्रैक्स को करे सील और आपको दे ठंडा फील। बर्जर रूफ कूलेंट सील,

0: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
2: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
4: सरसों से सरसों हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
5: JK Tire.
6: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
7: Jindal Saathi Seal hai, to asli stainless steel hai.
8: To jab bhi aap stainless steel pipes and tubes khareedein, Jindal Saathi Seal zarur check karein.
7: Jindal Stainless, India's leading producer of stainless steel.

0: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
2: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
4: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
5: Jindal Saathi Seal hai, to asli stainless steel hai.
6: To jab bhi aap stainless steel pipes and tubes khareedein, Jindal Saathi Seal zarur check karein.
5: Jindal Stainless, India's leading producer of stainless steel.

0: सास बा
1: वाओ मामा क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा
2: सबका राजा आग प्योर मसाला।
3: We are over Jimmy।
4: Hey, life में scratches तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
5: इंडिया इंक्स मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम्स चोज इंडिया इंक्स बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट।
6: आई एम डिलाइटेड टू बी चेयरिंग टीम ऑफ सच डिस्टिंग्विश्ड फेलो बिजनेसमैन बैंकर्स। यू नो इट्स जस्ट लवली टू यू नो बी बैक ऑन दिस एनडीटीवी jury. I have been a fan of NDTV for a long time.
7: Many of the nominees are extremely close together in terms of what they've done.
8: Gender parity to be reflected in while we choose leadership as well.
9: It's also important that how they are reshaping the industries.
10: We've got a fantastic jury and we've left all decisions to the wisdom of the jury.
5: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards.
11: Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer. To create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you?
12: प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
5: इंडिया इंक्स मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम्स चोज इंडिया इंक्स बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट।
6: दीज काइंड ऑफ अवार्ड्स एंड यू नो ज्यूरी लाइनअप यू आर ट्रूली गिविंग इट द राइट वेटेज।
13: आई थिंक इट्स हार्टनिंग टू सी टैलेंट दैट देयर इज इन across India Inc.
14: We should be awarding companies and individuals who have focused not only on growth but also on bringing good governance.
15: Be part of jury and vote on the people, the men, the women, the companies in India who have the right stuff.

0: questions. Amitosh Parikh, it is the devout, it is the people who believe in Lord Sri Ram. Perhaps many of them, voters of the BJP, believers of the VHP, who are asking these questions. And those are the people who you have to answer to. Because the temple question is being asked not just by the opposition today. Sure, you can question their sincerity. But what about people who have actually given their hard-earned money to the Ram temple? At some point, there needs to be accountability to them also, right?
1: Exactly, Padmaja. The government is taking this thing into consideration. The FIR has already been filed. The other name has also been to be there. The investigation is still pending. Okay, I believe
0: Vivek
1: we should not make an hasten move.
0: Vivek,
1: just to clear our intent. And just to come as a reflect that we are true Sanatani.
0: You don't need to hitch your bandwagon opportunistically to this issue. That is the limited point Amitosh Parikh is making. And plus, jahan action hona hoga, hoga. Bulldozer bhi chalega, kya pata NSA bhi lag jaye, gunda bhi lag jaye, sab lagega.
2: देखिए भारतीय जनता पार्टी को विश्वास कौन करेगा? ये तो लोकसभा में खड़े होकर झूठ बोलते हैं. इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के लिए भी झूठ बोला खड़े होकर, हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी ने, कि वहाँ पर तो कोई शहीद हुआ ही नहीं और 13 महीने बाद रिपोर्ट आ गई.
0: पीछे
2: ना ना एक मिनट, इनको इनकी क्रेडिबिलिटी बता रहा हूँ.
0: मुद्दे पे
2: आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ.
0: ऑपरेशन सिंदूर देयर गेट सम डाइवर्जेंस.
2: छह जवान हमारे शहीद हुए, इसके लिए झूठ बोला गया, ये बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता. देखिए, गैंग्स ऑफ चंपत राय है, बैक्ड बाय द बीजेपी एंड द आरएसएस. समवन वाज टॉकिंग अबाउट द क्रोकोडाइल टीयर्स एट द मोमेंट. दिस इज द टाइम टू कैच द रियल क्रोकोडाइल्स. और मोदी जी तो एक्सपर्ट हैं इसमें, तो बचपन में मगरमच्छ पकड़ लेते थे, तो इन बड़े मगरमच्छों को मोदी जी कब पकड़ना है, पहले तो ये बता दें. और नया नाम आया है अर्जुन देव, जो कि थे रेडियो मैसेजिंग के हेड वहां. 1600 CCTV लगे हुए हैं प्रभु श्री राम जी के मंदिर में, और 400 सिक्योरिटी गार्ड थे जिनकी सैलरी जाती थी 1 करोड़ रुपए महीना. इतनी बड़ी बड़ी धांधली चल रही थी राम मंदिर के अंदर. और सिक्योरिटी एजेंसी किसकी थी? बिहार के भारतीय जनता पार्टी के एक्स MP हैं, उन्हीं की सिक्योरिटी एजेंसी को 1 करोड़ रुपए महीना ट्रस्ट देता था. इस हिसाब से वहां पर धांधली चल रही थी, इसको आप डिनाई कर सकते हैं?
0: विवेक जी, ये बताइए मेरे को कि आपका सेटिस्फैक्शन लेवल कब एकदम चरम पर आएगा? जब चंपत राय को हटा दिया जाएगा, या जब किसी बीजेपी के नेता को हटा दिया जाएगा, या आप इस बहाने से यू वांट टू क्लेम एवरीवन्स स्कैल्प?
2: वी जस्ट वांट दैट हूसोएवर इज इन्वॉल्वड इन दिस लूट should be behind bars.
0: But they are saying eight people are behind the loot and they are behind bars.
2: These are the tadpoles, ma'am. ये तो मछली भी नहीं है, ये तो tadpole है.
0: अच्छा, तो basically अब आप चंपत राय जी से भी खुश नहीं है? चंपत जी को कल को मान लीजिए FIR कर दिया, आप उससे satisfied होंगे?
2: मान लीजिए.
0: What will satisfy you that this investigation is impartial? What will satisfy you?
2: Anyone who has looted.
0: Think quick.
2: No.
0: Think
2: quick. Whoever has looted.
0: अभी आप चंपत राय बोलेंगे, चंपत राय अरेस्ट हो गए, फिर आप कहेंगे नहीं जी, योगी आदित्यनाथ को अरेस्ट कर लो.
2: नहीं. Whoever has betrayed the people, the faith of India,
0: because you,
2: be behind bars.
0: अरे, but they are saying those eight people have betrayed. You are saying no, those eight people are small fish.
2: Yes.
0: So tell me, who are the big fish according to you, which when action is taken against them, you'll be satisfied?
2: No. See what the people of Ayodhya are saying. See what the lawyers are saying. There has been an application given for the FIR against 4 people. And the lawyers association has given just 3 days.
0: When action is taken against them, you'll be satisfied?
2: They should be arrested and grilled. Then.
0: Okay. Not just FIR, arrest also, grill also.
2: Yes.
0: Look, Tuhin Sena. मोटा मोटा बात आकर के फंस गई है ऑन चंपत राय. एंड टिल द टाइम दैट यू टेक एक्शन अगेंस्ट चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा, ये आपके गले की फांस बनेगा.
3: देखिए, यू नो, दीज आर इनअटेंटिव पीपल. आई स्टार्टेड बाय सेइंग दैट द राम मंदिर ट्रस्ट शुड हैव आइडली filed the FIR 8 days before instead of, you know, trying to recover the money. But to my understanding, to my knowledge, it was Champat Rai ji who had initiated the process. We are not here to defend him. Trust me, if investigation leads to him, we will be the first person. I also, by the way, said that we may have erred. There may have been an error of judgment in appointing certain people. That is crystal clear. Aap bar bar pooch rahi hai, when will you be satisfied? These people will never be satisfied because they are here with a malafide mission.
2: No,
3: our job is to satisfy the 110 crore Hindus, the real Shraddhalus, and that is something. Please don't bash in. Ye background music mat dijiye yahan par. Our job is to satisfy the 110 crore Hindus, and we don't have any other option. We don't have any other option. A mistake has happened, but our intent is clear. We will ensure justice.
2: Dhol tha, wo janta ne dekh liya. Aur aap mujhe bata rahe hain, background music mat dijiye. म्यूजिक तो बजेगी 2027 में आपकी, जिस तरह

0: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
2: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
4: सरसों हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
5: देश का टायर जेके टायर।
6: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
7: Jindal Saathi Seal hai, to asli stainless steel hai.
8: To jab bhi aap stainless steel pipes and tubes khareedein, Jindal Saathi Seal zarur check karein.

0: सुबह।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
3: Where the software engineer meets the cool UI UX designer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.
4: We are over, Jimmy.
5: Hey, life mein scratches to aayenge. Gaadi ke scratches ko to Cosmo PPF samal lega. Aap apna dekh lo.
6: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
7: Really?
6: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program. Let's do it. Hello and welcome to a brand new show. I am your host, Mayank Chaudhary, and this is Limelight.
8: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
3: Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
9: NDTV tops the Reuters Institute. India reach rankings again. Number one in offline and online news reach. For the sixth year in a row, audiences continue to choose NDTV across television and digital. NDTV, trusted across every screen.
10: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
11: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
12: कुछ तो बात है इस दिल में।
13: पीमार्क, the mustard specialist since
14: 1933. सरसों
9: From the newsroom to the studio to the thick of political action.
15: अगर आपके आइडिया में है दम तो कहो वंदे भारतम। अब स्टार्टअप्स कुछ इलाकों तक सीमित नहीं रहेंगे क्योंकि खुल गया है भारत का सबसे बड़ा ग्रासरूट इनोवेशन मूवमेंट वंदे भारतम। vandebharatam.org पर रजिस्टर करो,
16: मिलेगा मेंटरशिप, नेटवर्किंग, इनपुट और एक शानदार नेशनल स्टेज। वंदे भारतम, एन इनिशिएटिव बाय गौतम अडानी।
17: देखिए वंदे भारतम का ग्रैंड लॉन्च इवेंट 4 जुलाई 2:30 और रिपीट टेलीकास्ट 5 जुलाई 12:30 सिर्फ NDTV 24/7 पर।
18: समर में बाल्टी तो चाहिए।
19: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
12: कुछ तो बात है इस दिल में।
11: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी। ये आपके लिए।
12: कुछ तो बात है इस दिल में।
13: पीमार्क, the mustard specialist since 1933.

0: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
2: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
4: सरसों हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
5: देश का टायर जेके टायर।
6: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
7: Jindal Saathi Seal hai, to asli stainless steel hai.
8: To jab bhi aap stainless steel pipes and tubes khareedein, Jindal Saathi Seal zarur check karein.
7: Jindal Stainless, India's leading producer of stainless steel.

0: Delhi.
1: Mm-hmm.
0: As you know, Hindi language, so I would like to talk to you in Hindi.
1: Achha.
0: Because it's nice to see you speaking Hindi. And my question is related to family values. तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जापान में अक्सर न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं और भारत में जॉइंट फैमिली की परंपरा है. तो आप भारतीय जो पारिवारिक संबंध हैं उनको किस नज़रिए से देखते हैं? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर कोई लड़की जापान में किसी से वेडिंग पर्पज से शादी करना चाहती है, जैसे इंडिया में होता है लव मैरिज या अरेंज मैरिज, तो क्या आप इजीली उसको बहू, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं या कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं?
2: That's an interesting question. That's levels that you have to cross for a shadi in Japan, because there are many here in India.
3: So I think it's very different, and I'm not gonna lie, it's going to be very challenging. I actually have the there is a Japanese YouTuber who married an Indian boy. And she has been vlogging, and the name of the channel is I forgot. But
0: मैं चाहूँगी कि आप हिंदी में बोलें.
3: अच्छा, हिंदी में बोलूँगी. हाँ,
2: इनके दो सवाल थे. पहला सवाल ये है कि न्यूक्लियर फैमिलीज वर्सेस यहाँ तक फैमिली कल्चर, एंड सेकंड शादी के लिए किस तरीके के लेवल्स को क्रॉस करना पड़ता है.
3: तो आई थिंक ओके, पहले फर्क के बारे में बताऊंगी कि आई थिंक एज यू सेड, जापान में घर न्यूक्लियर फैमिली होता है, एंड वो खाली न्यूक्लियर फैमिली की बात नहीं, पर फैमिली मेंबर के अंदर में बहुत इंडिपेंडेंस और इंडिविजुअलिस्टिक माइंडसेट है. कि जैसे कि अगर कोई भी चीज़ करने के लिए वो 20 साल के बाद मम्मी पापा का परमिशन मांगते नहीं है. लाइक वो मम्मी पापा भी, मुझे भी ऐसा सिखाया गया था कि खुद सोचो, खुद करो, मुझे मत पूछो, ऐसा मेंटलिटी ज़्यादा है. तो थोड़ा ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक हो जाता है, और पर उसकी वजह से इट्स अ प्रोज एंड कॉन्स कि अगर ऐसे हैं और ज़्यादा इंडिविजुअल हो जाएंगे तो थोड़ा आइसोलेशन भी होएगा ना. तो जैसे कि बच्चे, जापान के जो ज़्यादा बच्चे हैं वो मम्मी पापा अगर दूर रहते हैं तो इतना बात नहीं करते हैं.
2: डबल एज स्वॉर्ड है.
3: हाँ, और इंडिया में आपको, आप लोगों को तो पता है कि बहुत मिलजुल के रहते हैं, हमेशा बात करते हैं, और सहायता ओपिनियंस भी बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं. तो आई थिंक उसकी वजह से हमेशा मिलजुल के रहते हैं, विच आई फील रियली गुड. मुझे भी इंडिया आके ये सीखा है कि थोड़ा मम्मी से बात करनी ही चाहिए तो बात ज़्यादा करना शुरू किया है. तो आई थिंक वो फ़र्क तो है. तो अब अगर कोई भी जापानी लड़की इंडिया आएंगे या कोई भी जापानी लड़का इंडिया आएंगे और शादी करेंगे, तो वो इसका फ़र्क बहुत ज़्यादा है. खाना भी बहुत अलग है, और घर के अंदर में जो नियम हैं वो अलग अलग हैं. तो बहुत चैलेंजिंग होगा, पर अगर फैमिली सपोर्टिव है तो कोई चिंता नहीं है ना. तो आई थिंक फैमिली अच्छा है तो सब अच्छा है.
2: फैमिली और प्यार, दैट्स ऑल वी नीड. गिव इट अप फॉर मायो. बट बिफोर वी लेट यू गो, ऑफ कोर्स वी विल हैव टू डू नाटू नाटू वन मोर टाइम.
3: ओके,
2: बिकॉज वी हैड सच अ ग्रेट स्टार्ट एंड नाउ वी वांट टू रैप इट आल्सो विद दैट काइंड ऑफ एनर्जी.
3: ओके,
2: सो कैन वी हैव द ट्रैक अगेन एंड हैव हर डांस ऑन नाटू नाटू वंस अगेन. गिव इट अप फॉर मायो गाइस.
3: दूसरा सेक्शन कर सकते हैं क्या?